राधा के नट वर लाल कन्हैया, गोकुल बाला गोपरिपाला, राधा के नट वर लाल कन्हैया। नंद कुमार